मना तुम कोई चिंग तुम कंगूच तुम या कोंगे ये मचिंग पोदो यावा यो मचिंग पोदो ले पाला चिंग पोदो पोदो मचिंग पोदो पलांगा पोदो चिंग पोदो पलांगा तेरे यारो के उकोन्यांगो तेरे निन्यो के उकोन्यांगो तरंगोंगो अबुरियो दिलो के कोन्यांगो मनवेरा अबुरियोरी को रोके उकोन्यांगो मनबांडा ओके उकोन्यांगो मवियारी यामरीमाई ओके उकोन्यांगो तरंगोंगो जमोको वायो चिंबी मुके उकोन्यांगो निगोडुंगा कुके कोन्यांगो मनवेरा